0: Better appliances ka AC, cooler, fridge, cooker, induction, air fryer lagayat anya gharelu saman haru ghar lyaera ta hernus. Tapai pani bhandu hunecha. Malai ta Better ko bani lagisakeko cha. Better appliances, Better ko bani lagcha.
1: Thandu ba, mera hari ba. दुर्गा को की टाव को दुखना छीन मैं दुर्गा दे झंडू बाम एक बाम तीन काम झंडू बाम दुर्गा को की टाव को दुखने छीन मैं आरा झंडू बाम
2: अब झंडू बाम रेगुलर र अल्ट्रा बाजार में उपलब्ध छ
1: झंडू बाम
3: दीदी किन हो यो छिमेकी में त सबै झगडा कुटपीट मात्र हुन्छ कतै उजुरी दिने कि
4: हो हिंसा सहनु हुन्न हामी सबै मिलेर यस्तो विभेद रोक्नु पर्छ
3: हिंसा सहेर नबसौ विभेद मुक्त समाज निर्माणमा जुटौ
4: जुनसुकै प्रकारका शारीरिक वा मानसिक हिंसा कानूनत दण्डनीय छ लैंगिक हिंसा भएको देखेमा वा भोग्नु परेमा तत्काल आवाज उठाउँ र कानूनी उपचार खोजौ
3: अनुरोधक गण्डकी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय प्रेस रजिस्ट्रारको कार्यालय गण्डकी प्रदेश पोखरा
5: पद्मश्री हस्पिटल एण्ड अलाइड साइन्सेस प्राली न्यूरो पोखराले विभिन्न प्रकारका विशेषज्ञ सेवाहरू प्रदान गर्दै आइरहेको छ
6: बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर विनोद तुलासन डाक्टर वन्दना श्रेष्ठ
7: हार जोर्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर यज्ञमान साक्य डाक्टर प्रवीण थापा डाक्टर सुभाष गुरुङ
6: जनरल एण्ड ल्याप्रोस्कोपी सर्जन डाक्टर नरेन्द्र विक्रम गुरुङ डाक्टर देवेन्द्र श्रेष्ठ
7: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर डेला सिंह जोशी डाक्टर चुम्मया पोन
6: मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर तेजबहादुर गुरुङ
7: क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर ऋषि सेर्चन फिजिसियन तथा पेट कलेजो रोग विशेषज्ञ डाक्टर विकास अधिकारी
6: पेट कलेजो रोग विशेषज्ञ डाक्टर शंकर बराल
5: युरोलोजिस्ट तथा मृगौला रोग प्रत्यारोपण सर्जन डाक्टर प्रकाश छेत्री मृगौला रोग विशेषज्ञ डाक्टर जुजु राज श्रेष्ठ नसा तथा मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टर मानकाजी थापा मगर प्लास्टिक सर्जन डाक्टर पियुष गिरी छाला विज्ञान भेनेरियोलोजी तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर अस्मिता वाग्ले नाक कान घाँटी तथा थायराइड रोग विशेषज्ञ डाक्टर विकास गुरुङ कन्सल्टेन्ट रेडियोलोजिस्ट डाक्टर मनिष किरण श्रेष्ठ डाक्टर सुमिरन श्रेष्ठ कन्सल्टेन्ट एनेस्थोसियोलोजिस्ट डाक्टर भूपेन्द्र कुमार तुलाचन डाक्टर विशाल गुरुङ कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डाक्टर अनुमल पौडेल
8: वार्ड आईसीयू एनआईसीयू जनरल एण्ड ल्याप्रोस्कोपी सर्जरी सेवा पोस्ट अप सेवा फिजियोथेरापी इन्डोस्कोपी क्लोनोस्कोपी इको टीएमटी हल्चर पीएफटी युरोफ्लोमेट्री डायलोसिस सेवा र आँखा उपचार सेवा चौबिसै घण्टा इमर्जेन्सी सेवा साथै अन्य विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा सेवा प्रदान गरिएको जानकारी गराउँदछौ
6: चौबिसै घण्टा प्याथोलोजी सेवा उपलब्ध छ विस्तृत जानकारीको लागि पद्मश्री हस्पिटल एण्ड एलाइड साइन्सेस प्राली पोखरा नौ न्यू रोड फोन 061-590-162 590-163
9: हरेक

0: मम्मी गर्मी भाई के ची सो प्यूना
1: प्यूना लाई ची सो उठाओ हॉर्डे
2: हॉर्डे गर्मी मनाया स्विंग
1: रिफ्रेशमेंट पार्क न्यूट्रिशन मीट
2: ची सो हॉर्डे।

0: मम्मी गर्मी भाई के ची सो प्यूना
1: प्यूना लाई ची सो उठाओ हॉर्डे
2: हॉर्डे गर्मी मनाया से
1: रिफ्रेशमेंट पाम न्यूट्रिशन मी
2: ची सो हॉर्डे
3: ओहो नासर बे कत्ती छाबा डिजाइन बे मारेगा ना किनानी खानी तोला
4: खानाई बीवा ना सर्वे रूपा कोट ज्योति सुनचाती दुकान महेंद्र पुलारी तोला
3: ए नई शाबा मारे दुकान पो मोना नई प्रेसोलाई नी चार चूरा रैया औठी हमेला झोका टॉस टिक्री हार तन चनाई तो होनी जगा मात्र आंगी खैमा खैमा समस्या पर्दी र मार चुवल तुई बिस्यानारी बेल्ले छाबा पोपिम ओछे
4: हजुर किने झोको लाइनी छाबा छाबा छाबा मारे डिजाइन गहना चैदी म बिस्या वा चुवल तुई बिस्या रूपाकोट ज्योति सुनचाँदी दुकान पोखरा महेन्द्र पुलारी खोऊ जु दुकान पोखरा महेन्द्र पुलाई विशाल बजार गेट गलो धिताई पालिकी चोकै यावै क्यार मोहै
3: जगा मात्र आंगी रूपाकोट ज्योति सुनचाँदी दुकाने शाखा पोखरा महेन्द्र पुलारी अन्नपूर्ण सुपर मार्केट आडरे मुहै आसुम ल्यादो
4: समुदाय रबा ताक रिबा ज्याल जाति कृबा छतैरा नत खैमा बिलन चन्न यामो
3: तोय निल तुई दिशा रूपाकोट ज्योति सुनचाँदी दोकान महेन्द्रपुल पोखरा सम्पर्क 061-5808-15 98-5-60-35-8-15 प्रोप्राइटर दशरथ सुनार
4: छतैरा त तान निबिम्द
5: बाजेदेखि नातिसम्म पाइन मैले कुनै खोट त्यसैले अनि जस्तो
3: दुकाने घी शाखा पोखरा महेन्द्र पुलारी अन्नपूर्ण सुपर मार्केट आडरे मुहै आसुम ल्यादो
4: समुदाय रबा ताक रिबा ज्याल जाति कृबा छतैरा नत खैमा बिलन

0: तपाईँ यसपछि समाचारमूलक प्रस्तुति अन्नपूर्ण हाइलाइट्स सुन्न सक्नुहुनेछ।
1: बाजेदेखि नातिसम्म पाइन मैले कुनै खोट, त्यसैले भने जस्तो गहना किन्न जाउँ है रूपाको।
2: टाइम चेक।
3: यति बेला साँझको छ बजेको छ।
4: यस टाइम चेक का प्रायोजक रूपाकोट ज्योति सुन चाँदी दुकान महेन्द्र पुल पोखरा।
5: किन्नुहोस् अब ढुक्कले सुनका गहना, गए अब रसायन केडियम राख्ने समय।

कोयल मेटल इंडस्ट्रीज को उत्कृष्ट उत्पादन जिंदल एसएस पाइप नेपाल नंबर वन ब्रांड। नक्कली देखि सावधान, जिंदल को लोकप्रियता ले गर्दा नक्कली जिंदल बजार में आएको हुनाले प्लास्टिक में मात्र नभई पाइप में पनि जिंदल लेखेको पाइप मात्र खरीद गर्नु होला। टिकाऊ र गुणस्तरीय काम जिंदल पाइप हो यसको नाम।

0: तपाईँ यसपछि समाचारमूलक प्रस्तुति अन्नपूर्ण हाइलाइट्स सुन्न सक्नुहुनेछ।
1: बाजेदेखि नातिसम्म पाइन मैले कुनै खोट, त्यसैले भने जस्तो गहना किन्न जाउँ है रूपाको।
2: टाइम चेक।
3: यति बेला रातिको 9 बजेको छ।
4: यस टाइम चेक का प्रायोजक रूपाको ज्योति सुन चाँदी दुकान महेन्द्र पुल पोखरा।
5: किन्नुहोस् अब ढुक्कले सुनका गहना, गए अब रसायन केडियम राख्ने समय।

0: Pareto kie nagari pokra ma Metro City Hospital prali sirjanasok pokra le bibhinna kisimka bisheshagya chikitsak sewar ko upachar lyaeko jankari garaudachau.
1: Hamra sewa haru
0: heart jodne nasa tatha merudanda rog
1: general surgery sabai prakar ka operation sewa
0: mirgaula tatha mutra rog uro surgery
1: pet chhati mutu thyroid tatha madhumeh rog
0: neuro surgery sewa
1: bal rog
0: nak kan tatha ghati rog
1: manasik tatha snayu rog
0: prasuti tatha स्त्री रोग
1: छाला यौन तथा कुष्ठ रोग
0: नेत्र रोग
1: दाँत तथा मुख रोग
0: क्यान्सर रोग दूरबीन र लेजर प्रविधि प्रयोग गरी गरिने विभिन्न अपरेशनहरू अत्याधुनिक माइक्रो डिभाइडर प्रविधि द्वारा नाक कान तथा घाँटी रोगको अपरेशन मासिक नियमित खोप सेवा
1: 24 घण्टा एम्बुलेन्स इमर्जेन्सी अत्याधुनिक प्रयोगशाला तथा फार्मेसी सेवा
0: सुविधा सम्पन्न आईसीयू सेवा
1: डिजिटल एक्सरे
0: सिटी स्क्यान सेवा
1: भिडियो एक्सरे इको कार्डियोग्राफी
0: Endoscopy, ECG, EEG, PTA,
1: Physiotherapy, Uroflowmetry,
0: Chemotherapy,
1: Surachit Garbhavatan Seva,
0: Whole Body Checkup Health Package,
1: Metro City Hospital Prali, Okura Art Srijanachok Kaski,
0: Phone 061 572 648 572 849

0: जब जब अपने अंदर झांकू तब तब पाऊं तेरे दर्शन।
1: नंदीश्वर जय प्राणपाल जय शंभू हर हर सनातन।
0: तेरे चरणों में आया तेरा पुजारी मेरा उद्धार कर।